0: रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ज
1: लस है मेबे फेबेमा रंगमाजे आरसीसी दिम गोरा चहरा दिन प्रे रखोरमा नगफारममा असिम टमाटर की ट्रनेलमा सिंगबै सुर सिंगजेपल मुबा होले सिंगबै सुर मुसम ओम टंकेश्वर इंटरप्राइजेस धादिंग बेसी सुगम टोलरी सेगो है रोमा हुजुरिमी दिम फिटिंग सिंगबै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरला जम्मानु सामानमा होलसेल मूल्यारी यंगबा असिम दिम सम्मन बोरबरी ढुवानीला सुविधा न मुबा क्रयुर्नाले बजार कोर्ब आहिने रोमा सेगो बरो ओम टंकेश्वर इंटरप्राइजेस धादिंग बेसी सुगम टोलरी सम्पर्क नम्बर चाहिँ 0-10-520-470 असेम 98-5-11-87-882 फोन सिन्जिम सेगो है रोमा
0: रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ज

0: रेडियो बिहानी 97.6 MHz
1: अब रंग थेसु मुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माई फिल नला विश्वासी चमक बस्युगो बेनन ताम मालामा टिका लासे जयमसी तथा नमस्कार लासु फ्याफुल्ला कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ तथा जीवनलाई क्षण गतिला श्रृङ्खलालाई अङ्क 33 रङ्गे स्वागत मुला न बियो तामाङ नक्षण यङ बेनन से गेन सङ्घर्षलाई सामना लाला कठिन परिस्थिति कदे जुन यङ द मिवा लगप्न बारी हमला जब यङ द मनमुला कि बेनन आशा माबा मुला जब लुइरी यङ सी बेनन भन्दा लानन मूल्यवान से गते यङ द खोसप ताबा रङ न मनमुला थे क्षण गदेरी यङ तिगत लाला त्यो प्रश्न र जवाब पिनबाला लागिरी यङ दाउद देन सम्बन्धित याकर्गी सत्य कथा दा च्याला दाउदला लुइरी तिगै दुई चुरङमा मुबा जब थेसे गेन विजय देन सफलता याङजी रङबान जब थेसे गोलेत दा सेजी यद्यपि सन्द दुई यन चुरङ मुबा जब थेसे गेन तिन वितारक देन ब्रेबला अनुभव लाजी तिगचु रङला लुइरी तलब तजिब कथा देन नोन मोसे मुला दाउदला लुइला याकर्की नाटक कि घटनारी थेसे रङला सिपाही कदेदा सेना दा सिग्लग्री मुबा रङला गृह शिविर थासी रङला परिस्थिति कदेदा खेदना निर्देशन पिन्जे खेनी गदे निब लिच्छ अमालेकी गदिसे सिग्लक फेरि आक्रमण रजी पहिलो सामुएल 30:3 जब दाउद देन थेनीला मि गदे सिक्लग्री दोजी तब थेनी गदेसे शरद दा मेसी भर्सी लाभा देन थेनी गदेला खुइ गदे देन जजा मे गदेदा बोर्बा माङजी पहिलो सामुएल 30:4 त्यो कारण दाउद देन थे देन मुब मि गदे चुत्ते लानन क्राजिकी थेनी गदे रि अझ क्राब शक्ति नोन आचनी अमिली गदिसे दाउदला नि नोन खुइ गदे जसरी थेला प्रिय अभिगेलेन समावेश मुबा बोर्ब मुबा दाउसे रङला व्यक्तिगत क्षतिला कारणसे जेखेन शोक आलानी दाउद कसी नाला बेनन निगदे दुखी देन बोरुबा रेबा मुबा टिक दाउसन थेनी गदला जजा मेदा कैदीला रूपी बोर्ब मुबा थे निगदे चोत्ते विचलित मुबा कि थेनी गदेसे पुङसी सेवा ताम्रताम लजी रङला लुइला चु लानन तनापूर्ण छेन्द्री दाउसी परामल शक्ति देन म्योजी पहिलो सामुले 30:7-8 तब दाउद से अभिमेले कदेला कोला पुजारी अभियाथार दा एपोत बाबम हुकुम लजी थेन्दे अभियाथार से थे बजी तब दाउद से परम प्रभु दा न्योजी तिगत ना चु लुटपीट लाभा कदेदा खेदु तिग ना थेनि कदेदा रूपतावारी हमला रंग से रोसे जवाब पिन्छुजी थेनि कदेदा खेद यदि थेनी गदेदा रूपताजी बेनन भन्दा अलग लस्युला लुइसरी याङला बेनन भन्दा दुप दुप घडिदी याङ बेनन भन्दा महत्वपूर्ण गीत कदम विव परम प्रभुरी शरण किनबरी हिन्बा रोला माया से याङला अस्तिदा क्लिङ्न लबरी पिन्सुगो रोदा याङला सान्त्वन पिन्सुगो थेन्जे थेलिच रोग्यम आवश्यक बुद्धि मैसुगो ताकि याङ जुन परिस्थिति रे मुला थेला सामना लबरी हमला दोस्रो कोरन्थी 1:3 यङ द लानन दया लवदेन दुखरी रो लवा यङला प्रवेशु ख्रिसला अब परमेश्वरलाई जय जयकार धगै जब यङ गल्ती लाला जुनला कारणसे यङ सी गेन साई फादोसेला ताला परमेश्वर यङ फिर गेन दया लसु मुला रो यङ द क्षमा देन शान्त पिनबरी मुला यङ से खेरि मुस्युला दाउसे योनन अमिलिकी गदेदा घेराब लावत लाला आज्ञा पालन लजी खेसे रङला सेना ग्याम 400 मिगदेदा रङ छ्याम नोन बाजी यदि एक मिनिस्टी दास ग्याम हुप रूपा जानकारीले माध्यम ग्याम दाउसे रङला सहरी आक्रमण लाभ बेगन अमिलिकी गदेदा चुरङबरी गेनन सेवारी हमला ताजी पहिलो सामुएल 30:18-19 अमिलिकी गदेसे बोर्बा बेनन्द नही खुइ गदे एन एन दाउसी दाजी चान्ना गेन जज गदे गदे लुटक ताबा माल थेनी गदेसी रङलन लागरी बोर्बा थोक तिगै एन अखानी दाउसी बेनन ताम दोसी यांगजी परिस्थिति गदे हाइम दमन रंग मृंग मुला ओत्ये आजीवा आतमुला निराशला रंगला प्रार्थना लसुगो रोला सांत्वना देन रोला बुद्धि एन मैसुगो रोसे रंग द जे लबरी निर्देशन पिन्सु मुला थेदा पालन लसुगो थेन दे रंगसी पक्कन नोन दाउद दा पिनमा मुक्ति मृंगसुला आमेन रंगिला जीवन री परमेश्वर जी प्रशस्त आशिष पिन्सु गई प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवन विक्टर यम लिखित सन्देश याङला भाषारी न्यन्सुजी कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ कार्यक्रमलाई बारे रे रङ निला केही प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव मुसम घन्दा सम्पर्क लसिगो घन्दा फोन नम्बर मुला 98685353939 हस्त त्यो समय रिङ बिदा ताजी रङनी छङमदानु जय मसी नमस्कार।
0: रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ज।